नमस्कार, मैं पंडित राजीव जनार्दन। आप लोग अभी सुन रहे हैं हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम आला।